एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नारय सुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत छुटत प्रवाह अमय अमरा पद अमृत सरोवर साध परया ते पीवह संत करहे मन मज्जन पुब जिनहो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब काल ठाकुर हर दास तने गुर राम दास सार अपार परे जाक सिमरन हुए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निद पाव बहुर न तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास ते आवहु ठाकुर कहो मान तन जियरे मुखी शांत पावह हो वह मन शीतल अगन ना अंतर तुखी गुर नानक कौ प्रभु दिखाया जल थल त्रिपवन रुखी विसर नाही दातार आपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहिले राख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय हुए सिफत खसम दी नूरे अर सहु कुर सहु चटिया
तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जनम जनम दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावेसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह, सत नाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी सोहे महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलघा,

सुख समघा हर हर नाम भजो पुरखो तमा सब बिन से दालद दलघा पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा मेरे मान पाज राम नाम अत पिरघा मैं मन तन अर्प तरयो गुरे आगा सिर वे चलियो मोल महंगा रहा नर पत राजे रंग रस मान बिन नावा पकड़ खड़े सब कल घा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फल घा हर राख राख जान किरम तुम्हारे शरणागत पुरख प्रतिपल घा दर्शन संत देह सुख पावा प्रभ लोच पूर जान तुम घा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मौका की जादान हर निमघा जन नानक नाम मिला सुख पावे हम नाम विटहो सद घुम घा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोकाओ की जादान हर निमघा जन नानक नाम मिला सुख पावे हम नाम विटहो साध घुम घा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोही महला चौथा हर हर नाम भजयो पुरखोत्तम सब बिनसे दालद दलघा पाओ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समघा

Thank you.

उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। Thank you.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Adiós.

Thank you.

हर जस गुर ते मांगना,

0: पौड़े बड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेकना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देस जगता नानक दास रदास तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पमन गुरु पानी पिता माता तरत महत देव से रात दुई दाई दाया खेले सगले जगते, जगते।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Elizabeth.

ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚਲ ਚਾਉਰ ਛਤ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ।

ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ

Yeah.

Thank you.

तू मेरो मेर प्रभत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते।

असां जोर नाही असां।

सब को तेरे वस, मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत जैस किछ करना सो हमरा मीत।

जो नावे सुकुल तरावे, उधार

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म दूर करमी।

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

Thank you.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Thank you.

आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चुकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खासम बसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गूजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतास है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परे, सैल पत्थर मह जंतो पाए। ताका रिजक आगे कर धरे, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरे। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की धरे। सिर सिर रिजक संवाहे ठाकुर, काहे मन भौ करे। ऊडे ऊडे आवै सै कोसा, तिस पाछ बचरे शरे। तिन कवन खलावे।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज बिडान तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखह जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंक जो मुह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा
ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਾਪ ਤਾ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दोष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुज जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवा ते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहें सब काल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताकि ताप तनक मह हर हो।
रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनह बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जैस दिया इह वड्याइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

प्रथम पगौती सिमर कै गुर नानक लई ते आई, फेर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाई। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराउ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाई। तेग

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बल्ले। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी सिख।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, आब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मन, जान को पूरन दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रवदास आस लग जीवम, चेर पयो दर्शन देखे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परियारे। दंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जान, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेवीय, एहनस सहज सुभाय, दर्शन परस गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही, सब नांद विसाहु। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Thank you.

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेवियै, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमंदी। नूर अरसों कुरसों, तुद डिठे सचे पात सहा, मल जन्म जन्मंदी। सजन सच्चा पात साहो सिर साहांदा, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा। सजन सच्चा पात साहो सिर साहांदा, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी महला पंजवा, औखी घड़ी ना देखण दे। आप

मन बिलास भय साहिब के, उचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक।

0: अचारज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सिर मस्तक रखिया, पार गंग हस्त खाया रखिया, परमेश्वर है आत्म रखिया, गोपाल स्वामी धन चरण रखिया, जगदीशरै सर्व रखिया, गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत बशल अनाथ नाथी, सरन नानक पुरख उचित है। बिलावल महला पंजवा। ताती वो न लगई पार बिम सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औख दिया एका लिवलाई रहाओ, राख लिए तन रखनहार सब याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई, प्रभु पे सहाई सोहिलारा, गौड़ी दीप की महला पहला। ओंकार सतगुरु प्रसाद, जयकर कीर्ता किया करते का होए विचारो, कित कर गावो सोहिला सिवर हो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हों बारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े समालिन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन सीसड़ियां जो होवै साहब स्यो मेल, कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन, सदन हार सिमरी है नानक से दयावन, रागासा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राख बड़ाई तोय रहाओ, विश्वे जसिया घड़िया पहरा, थिति बारी माहो होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कीते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप माले आन लो पवन चावरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए सब खंडा तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाओ, सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नायक तोही, सहस पाद बिमल नन एक पाद, गंध वेन सहस्तव गंध विचलत मोही, सामै जोत जोत है सोए, तिसदै चानन सामै चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावै सो आरती होए, हर चरण कावल मकरंद लोभत, मनो अंगन मोहि आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारं कोई जाते तेरे नाहीं बासा, ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਵਪਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰਡੰਡਾ ਹੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਪਵਖੰਡਾ ਹੇ ਅਗਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੇ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਪਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਘਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵਹਿ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ।

लौटने आसरियों के आसरा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जियो।

गुर का शब्द तरे मुन के ते गुर का शब्द तरे मुन के ते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन के ते

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए

ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Vai, vai, vai, vai.

कौड़ी आप ही नहीं आप साजी आप इंद्र चोना दो ही कुदर साजी एक राशन उठो चा दादा करता आप तू तुस देवे करे पसा तू जोना ही सबसे दे लैसे हैं जिंद कवाओ करे।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आठ सुनाया। सतगुर मिलया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सिउं चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

सुख लह ते नर संसार में अभय पट रिप मद ते है।

गे मात तरलोचन चेत भगत कबीर है जाने रोक मांगद कर तू राम जंपो नित पाई।

0: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार इकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखा संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगत लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
1: जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जंपर के लिखे पवत पाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुर गौहर दरियाओ पलक डुबनते तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतार उचरे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परे
2: चित चितों अरदास कहूँ पर कह भी न सकूँ सर चिंत जबात सात संगत हो तकों तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहेब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूँ गुर अमरदास कारण करना

0: जीव तो रखे तिव्र हो। पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्तें लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उड़नत न तावे निरंकार कै वसे देश हुक्म बुझ विचार पावे कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुखो है पंडित मिठे बरस एक हो फिरो किन्हें परचों लायो कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुणों क्या कहो गुरु ने मिलायो पिखिया जीव तू रखे तिव रहो जीव तू रखे तिव रहो।
1: पहर समाद सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ो त्रम तनख कर गए हो भगत सी लै सर लड़ो पै निरपो हर टल मन शब्द गुर ने जा गड़ो काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत बिखंडो पलो पुहाल ते ज्योतना नृपत नाथ नानक गबर गुर अमरदास सच सल भण तैं दल जितो एव जुद कर।
2: कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै खबजन फल उन्हें

भूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक

साहिब जी बिलावल मोहल्ला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहित सियों जित होण खसम ना पाया पौड़ी छोड़ के फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहित सियों जित होण खसम ना पाया पौड़ी छोड़ के फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ ना देई लिव लागण जिने हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तै

काल है मार बेदार, जिसने नदर कर सोई जन पाए, गोर का शब्द संभाले।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

पौड़ी सबको आखी अपना सुनाई सोचन कड़ी है किता पु अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं है तो जगता कायदगार भंडी है मंदा किसना आखी।